जी गुरु गरीब निवानी तरजानी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दाजरियां पर गुरु किया संत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जानी कृपा करनी देर रुका दे नाम दत्त

निहित सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह। दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते। तुमरी शरण तुमारी आस तुम ही सज्जन सुहिले। राखो हो राखनहार दयाला नानक करके कोले। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पीखिया से फिर गर्भास ना परिया रे। गुर पूरा कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी। गुर पूरा चरनी लाया हर संग सहाई पाया। परमेसर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाही। माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीर्त की गुर रामदास रखो हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास रखो हो सरनाई। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। नमस्कार गुरदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। पव जल विचों काढ़ के

0: कुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिए। ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, गुर तेग बहादुर परम कृपाला, श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरों तरा पर पुन पुन शीशा, बंदों बार बार जगतीशा, एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघन विनाशन सोए, जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कार अनुराग, गुरु ग्रंथ साहेब उदद, बंदों कार अनुराग।
1: सतनाम

0: और हे भाई गुरु जी, आप जी का नाम भी नहीं जपिया, शरण विच भी नहीं आए, संगत विच भी नहीं आए। जेड़ी जिंदगी सी वो कदे टिकी नहीं, वो स्थिर नहीं रही।
1: पूरा सतगुरु सहज ना भेटिया।
0: जदों महाराज कहिंदे गुरु की शरण विच ही नहीं आउणा, बाणी पढ़नी नहीं, कीर्तन सुनना नहीं, कथा सुननी नहीं, पूरे सतगुर तो बिना सहज नहीं आया जा सकता। पूरा सतगुर मिले ते सहज मिलता है, पूरा सतगुर मिले ते बंदा मुक्त हुंदा है।
1: साकत आवा जाई।
0: ते जेडे लोग साकत हुंदे आ, माया दे उपाशक हुंदे आ, दुनियावी पदार्थां नूं पहल दिंदे आ, सच्चे पातशाह जी कहिंदे साकत हो गए। भगत कबीर साहब कहिंदे कबीर साकत संग ना कीजिए, एहो जे बंदे दा संग ना करी दूरे जाइए। भाग कहिंदे जदों साकत बंदा दिसे भज जी, ऐ कहिंदे छूटां वट जाई। क्यों? क्योंकि वह आप भी नहीं जुड़िया ते तैनू भी नहीं जोड़ना। हुण जिहड़ा जुड़िया नहीं वह जोड़दा नहीं, जिहड़ा जुड़िया वह जोड़ देगा। जोड़न वर्गा पुन नहीं, तोड़न वर्गा पाप नहीं। रब का मामा मां भानी का धर्म का वीर भाई गुरदास साहिब विद्या मारतंड गुरमत दे धनी, वह कहिंदे जिहड़ा टुटे नूं जोड़ दिंदा है। जेहो जा कहिंदे सत सोने दे मंदर बना के दान कीते, जेहो जी टुटी हुई रूह नूं अकाल पुरख दे नाम नाल जोड़िया बराबर फल है। इत्थे एक तोला लैके वेख लो सोने का, बहुत महंगा है। आखो सतना सत सोने के मंदिर बना के दान करने, किसी की झोली पाने बड़ी औखी गल है। ये तो कार सेवा वाले महापुरश है, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, जिन्होंने एडिया एडिया व्डिया गुरमुख प्यारियो सरावं बना देनिया, यात्री निवास बना देने, ते वो भी संगतां दी झोली विच भेटा करदे ने। चाहे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भेटा करदे ने, चाहे दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी नूं भेटा करदे ने। इह तां उहनां दे हिस्से सेवा आई आ रब दे प्यारियां दे। इह तां गुरमुख प्यारे उही सेवा कर सकदे आ, उही दान कर सकदे आ। सो सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी बख्शिश करते हैं। दोबारा पंक्ति फिर पढ़ो जी।
1: पूरा सतगुर सहज ना भेटिया।
0: पूरा सतगुर कहिंदे भेटिया नहीं, भेटे दा अर्थ हुंदा मलाप पूरे।

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल चौर छत्र तखत सिंघासन दे मालक गुरता गद्दी उत्ते विराजमान दोहां जहानां दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज

अकर्मणा धर्मणा जनेभ्यो मनःप्रियाः शरणागताः। एक श्री छंद अजय लय भय भय भू अजो नास काश गंज भंज लख पख काल दयाल लेंग भेग नाम गह डाना थे ब्रह्मा थे अजोनि अमोनि न रागे न रंगे न रूपे न रखे अकर्मंग अभरमंग अंज लिखे भुजंग प्रिया छंद। नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निरकामंग भिभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग भिभूते सदा सच्चिदान सतंग प्रणासी करी मूल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय भिभूते गजायब गनी मे हरियंकरियं करी मूल रही मे चत्र चक्रवर्ती चज्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वयुगते दुकालंग।

आज्ञा लिखारी के दस का तो प्रसाद चौपाई प्रणवो आदि कंकारा जल थल मयल की ओपसारा आद प्रगव गदनासी लोक चतर ज्योत प्रकाशे हस्त कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सर जाना अदब अलख पुरख अभगामी सब घट घट के अंतर जामी अलख रूप अच्छे अनभेखा राग रंग जय रूप ना रेखा बरन चयन सब होते न्यारा आद पुरख अदब अभिकारा बरन चहन जय जात न पाता सत्र मित्र जह तात न माता सब ते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद पानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्मा बिशन अंत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो कोट इंद्र उपेंद्र बनायो।

सर्व जोत के बीच समान, सबहु सर्व ठार पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता, जात पात जय चेहना बरना, अवगत अक्षय अनभरमा, सबको काल सबन को करता, रोग शोक दोकन को हरता, एक चेत जय एक

कात हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कात हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कात हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी, कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो, कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन छेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत, कहूँ त्रिगुण अतेत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जज गंधर्व ओरक कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो, कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपद जपे हो, कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो, कहूँ कोप काव होय के पुराण को पढ़त मत कत, हूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद विसी, कहूँ इंद्र पद भी छिपाए छीन लेत हो, का तुहू विचार अविचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी, कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कहूँ डंडी हो पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो, कत हूँ सिपाही हो के साधत सिलाहन क, कहूँ क्षत्रिय हो के अरे मारत मरत हो, कहूँ भू भार को उतारत हो महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीतनाद के निदान को बतावत, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कत हूँ पयुक हो के पीवत पीवावत हो, कत हूँ मयुक कहूँ मदपान हो, कहूँ माँ सुर हो के मारत मवासन को, कहूँ माँ देव देवतान के समान हो, कहूँ महाधीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुतत कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छालाधर छल भारी, कहूँ छक भारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाया, कहूँ नृत्य के नचया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद वाणी कहूँ को की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूपो के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया की तमानी महामान हो, विद्या के विचारों के अद्वैत अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो, जोवन के जाल हो के काल हो के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला सी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ इकांति को जाप, कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ बार देत कहूँ छाले सिंह छिनाए ले, सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो, तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समोसे धान के, देख फिर घर जोग जति के, सूर सुदार्दन शुद्ध सुदाद के, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे मत को ना देखत प्राण पति के, श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन
एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग तुरंग से उदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूत भवील भली पेत न्यावत शीश ना जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देव दिशान को बाजा ढोल मृदंग नकारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवे के भवान के भूपत कौन गने नहीं जाते बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे में अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहाने दया दम दान संयम नेम अनेक अभिषेक है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन हार जती जधार समय सो विचार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुपा तुरंत दुबा सो सासना दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मन मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बड़े आर विचार सार की धार बछैया तोर देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक दविया दानव देव फने निसाचर भूत भवेक भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुण्य प्रतापन बाढ़ जाए धन पापन के बहु पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र राधेव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान के जादिक दान एक स्वयंवर साज मरेंगे ब्रह्म महेश्वर विषण सची पद अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बासकियो बेखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैसे बितायो साच कहा सोन ले हो सब जेन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धर्यो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो रवाची दिशा में काहू पुछा को शीश निभायो को उपतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो तो प्रसाद तो मर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछज तेज उदार अनभेज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत भांत चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापे हो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुखचार बकल बेअंत अनभेज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत प्रसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत प्रसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को न कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार मुहार कई वेद अमुख चार
कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई भेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कऊ कतत हिसो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव सन्यास कऊ जोग भेद उदास कऊ निवली करम करंत कऊ पौन हार दुरंत कऊ तीरा दान अपार कऊ जग करम उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र सिमृत रीत कहूँ वेद सिंह विपरीत कई देह देह फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूँ कर जल में जाप कहूँ सह तन परता कहूँ बाद बने करंत कहूँ ताप तनह सहंत कहूँ ग्रस्त धर्म अपार कहूँ राज जीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहू शेख ब्रह्म स्वरूप कहू नीत राज अनूप कहू रोग शोक विहीन कहू एक भगत अधीन कहू रंग राजकुमार कहू वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख ना उचरंत बैरा कहू संन्यास कहू फिरत रूप उदास सब कर्म भोकट जान सब धर्म नहपल मान बिन एक नाम आधार सब करम भरम विचार तब प्रसाद लघुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभे करि अधोक हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि तंत्र हरि अजात हरि अपात हरि मित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि भ्रम हरि कर्म हरि अजय हरि भय हरि भेद हरि छेद हरि अखंड हरि भंड हरि दंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि भेव हरि जेव हरि छेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि झितस्तुहि ऊर्धस्तुहि भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभूतुहि अभय तुहि अछूतुहि अछय तुहि जतस्तुहि व्रतस्तुहि गतस्तु

कनुका गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरते धूर के कनुका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नत्ते तरंग कोड उपजते पान के तरंग सबे पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपाय सबे ताही में समाएंगे। केते का चमच केते उनको करत भच्छ केते अच्छे वच्छ होए सपच्छ उठ जाएंगे। केते नव बीज आज पच्छ को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गान कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज हुआ तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपर सब ताही में समाएंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के भ्रमाए फिरत है। करवत सहद केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के भीन जग जारे मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन लड़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सत्य दाबद्ध दाबृत रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग। कहां वासता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कह बखानो कह मैं ना अवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैकंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे। परेयंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटाए उपाय उसारे गड़े फेरे मेटे बनाए। अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परेयंग परापरम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग अभूतंग अभेखंग ना सत्रंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अक्षय अद्वै अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध विरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अक्षय आद अद्वितय अथापे विमुक्तंग अक्षय आद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरमंग न सर्मंग न साके न भरमंग न चरमंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न वितरंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे। कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म थामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सत्य के बुद्ध के वृत्त लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृहं कहूं देह दोखं कहूं औखदि रोग के शोक शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं
कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जज विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या, कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ के रेष्ठ पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ वेवानी, कहूँ कोप की काव कथा कहानी, कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं, कहूँ मद्र वानी कहूँ छुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं, कहूँ परम पुराण को पार पावे, कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे, कहूँ शुद्ध सेकं कहूँ ब्रह्म धर्मं, कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं, कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रह देह कहूँ ने देहं, कहूँ त्याग गृहं, कहूँ योग भोगं कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं, कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं, कहूँ आरबी तोर की पारसी हो, कहूँ पहल भी पस्त भी संस्कृति हो, कहूँ देश भाग्या कहूँ देववानी, कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी, कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग, कहूँ जंत्र रीतं कहूँ छत्र धारंग, कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा, कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा, कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं, कहूँ मलेज भाग्या कहूँ वेद रीतं, कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी, कहूँ गारुड़ गुड़ कथा कहानी, कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो, कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभाहो, कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी, कहूँ राज साजंग राजाधिकारी, नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, अच्छे दी अच्छे आज अदब विधाता, न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे, नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते, तो प्रसाद पादड़ी छंद अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप वैनास, अनतोट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार, अनुभूत तेज अनशेज कार्यकर्ता सदीव हरता सनात, आसन डोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म, जय शत्रु मित्र नहीं जन्म ज्ञान, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान, जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान, जय ने गे ने ब्योध पान, जय जात पा नहीं शत्रु मित्र, जय ने गे ने चैन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेग, जय जन्म जात नहीं भरम भेग, जय कर्म भरम नहीं जा

जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आज नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलग रूप कथत कते, जय अलग रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कलव जोग साधंत दुरंत, तन शीत घाम बरखा संत, कई कलप एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधन तथा पावत न पार, कई उर्ध बाह देशन ब्रह्मंद, कई उर्ध मध पावक झुलंत, कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद, कई कौब काल कथत कते, कई अगन होत्र कई पौन हार, कई करद कोट मृत को आहार, कई करद साग पे पत्र भच्छ, नहीं तदब दे होवत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूं वेद रीत जग आदि करम, कहूं अगन होत्र कहूं तीरथ धर्म, कई देद देद भाखा रटन, कई देद देद विद्या पढ़ंत, कई करंत भांत भांतन विचार, नहीं नायक ताल पायत न पार, कई तीरथ तीरथ भरमसो भरम, कई अगन होत्र कई देव करम, कई करत वीर विद्या विचार, नहीं तदप ताल पायत न पार, कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म, कई सिमरे शास्त्र उचरत सो करम, निवलियाद करम कहूं हस्त दान, कहूं अश्वमेध मको बखान, कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार, कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार, कहूं कर जज गंधर्व गान, कहूं धूप देव कहूं अर्घदान, कहूं पितर कर्म कहूं वेद रीत, कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत, कहूं कर शास्त्र सिमरंत उच्चार, कई भजत एक पग निराधार, कई ने दे कई गेहवाद, कई भ्रम दे देशन उदार, कई जल निवास कई अगन ताप, कई जपत उर्ध लटकंत जाप, कई जपत जो कल्परंग पजंत, नहीं तदव दास पायत न अंत, कई करत कोड विद्या विचार, नहीं तदव दिष्ट देखे मुरार, बिन भगत सकत नहीं परत पान, भव करत होम अर जग दान, बिन एक नाम एक चित्त लीन, फोकटो सर्वधर्मा विहीन, तो प्रसाद तोटक छंद, जय जम्पो जुगण जुअ जुअंग, भय कंपो मेरे पयाल भुअंग, तप ताप सर्व जले रुथलंग, धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग, अनखेद स्वरूप भेद अभियंग, अनखंड अभूत अछेद अछियंग, अनकाल पाल दियाल सुअंग, जय ठट्यंग मेर काल निव भुअंग, अनखंड अमंड प्रचंड रंग, जय रचंग देव अदेव बरंग, सब कीनी दीन जमीन जमा, जय रचंग सरम कीन मका, जय राग न रूप न रेख रुखंग, जय ताप न साप न शोक सुखंग, जय रोग न शोक न भोग भुवंग, जय खेद न भेद न छेद सयंग, जय जात न पात न माद पितंग, जय रचंग छत्री छत्र छितंग, जय राग न रेख न रोग भणंग, जय द्वैख न दाग न दोख गणंग, जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो, दचार करी नव खंड सचियो, रस तामस तेज तेज कियो, अनुभव पद आप प्रचंड लियो, श्रिय सिंदर बिंद नगेंद नगंग, श्रिय जाच गंधर फणिंद भुजंग, रच देव देव अभेव नरंग, नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग, कई कीट पतंग भुजंग नरंग, रच अंड सेत उल भुजंग, के देव देव सराज पितंग, अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग, प्रभजात न पात न ज्योत जुतंग, जय तात न मात न भ्रात सुतंग, जय रोग न शोक न भोग भुवंग, जय जम्पय किन्नर जच जुअंग, नर नान न पुंसक जाय किए, गण किन्नर जज भुजंग दिए, गज बाज रथादिक पांत गणंग, भूत भविक भवान तुअंग, जय अंडज सेत जे रजन भूव काल पताल जलंग, रच पाव पवन प्रचंड बली, बन जास कियो फल फूल कली, भू मेर का निवास हितंग, रज रोज का द चंद्र वितंग, दुत चंद दिनी स दीप दई, जय पाग पवन प्रचंड मई, जय अखंड अखंड प्रचंड किए, जय छत्र उपाय छपाय दिए, जय लोक छत्र चार रचे, नर गंधर्व देव देव सचे, अन धूता भूता छूत मतंग, अन गादा वे आदन आद कतंग, अन खेद अभेद छेद नरंग, जय चार चतर चक्र फिरंग, जय राग न रंग न रेख रुखंग, जय शोक न भोग न जोग जुगंग, भो भंजन गंजन आद सिरंग, जय बंद देव अदेव नरंग, गण किन्नर जाच भुजंग रचे, मण माणक मोती लाल सुचे, अन भंज प्रभान गंज मृतंग, जय पार न पावर पूर मतंग, अन खंड स्वरूप दंड प्रभा, जय जम्पद वेद पुराण सभा, जय वेद कदेव अनंत कह, जय भूत अभूत न भेद लह, जय वेद पुराण कतेव जपै, सो सिंधा दो मुक्ताप तपै, कई कल्पन लो तब ताप करे, नय नय कृपा निध पान परे, जय फोकर धर्म सब तज है, चेत कृपा निध को जप है, तेव या भव सागर को तर है, भव भूल ना दे पुनर्धर है, एक नाम बिना नई कोट वृत्ति, इम वेद उच्चार सार सुति,
जो वारस के जस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है। तो प्रसन्न राज छंद सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है। समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदियु सर्व साथ है। अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है। सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछेज तेज मानिए। सदैव शुद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए। ना राग रंग रूप है ना रोग राग रेख है। अजोग दाग दग है भूता भ्रम भेक है। ना तात मात जात है ना पाचयन भरण है। अधेग असेग भेक है विश्व सदयु विश्व भरण है। विश्वम्बर विश्वनाथ है अभिषेक विश्व भरण है। जमी जमान के विखय सदयु करम भरम है। अद्वैक है अवेक है अलेखना ज्ञानी है। सदी सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नेत का बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताई है। गंजे आदेव है कहु सो कह पाई है। जिमी जमान के विखय समस्त एक ज्योत है। न घाट है न बाढ़ है न घाट भाट होत है। न हान है न बान है समान रूप जानी है। मकीन और मकान प्रमाण तेज मानी है। न देह है न गे है न जात है न पात है। न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न सात है। न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौल है न साक है न संक है। न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाको कुमार है। न नेह है न गे है न देव को बनाओ है। न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है। न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को स्वरूप है। न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को बनाओ है। न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है। न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है न जम है अभेक है। न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है। न तात है न मात है अकाल खंड रूप है। अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है। पर है पवित्र है पुनीत है पुराण है। आगंज है भंज है करीम है कुरान है।

खंड है ना रोग है ना सोग है ना भेद है ना भंड है ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाद है ना शीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैग है ना भेक है ना दुई है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सजीव दयाल रूप है अगंज है भंज है भर्म है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेग है बलिया रूप राग रंग है ना द्वैक है ना भेक है ना काम क्रोध कर्म है ना जात है ना पात है ना चित्र चेहन वर्ण है बेअंत है अनंत है अनंत जानिया भूम अभिज है सदा छेद तेज मानिया ना आद है ना ब्याद है अगाध रूप लेखिया दोग है दाग है अक्षय प्रताप एखिया ना कर्म में ना भरम में ना धर्म को प्रभाव है ना जंत्र है ना तंत्र है ना मंत्र को रलाओ है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र को स्वरूप है अभंग है नंग है अगंज सी विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ मोह कार है ना आद है ना ज्ञाद है ना व्याद को विचार है ना रंग राग रूप है ना रूप रेखरार है ना हाव है ना भाव है ना दाव को प्रकार है गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सितजपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आजे बड़े तपस्पति विशेखी है बेंत बेंत बेंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आदेव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदियु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के आनंद भांत सोद है तो प्रसाद रुआ मल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाद गाद वृक्षो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आदपुरग अपार हत कीट विखे विषय सब ठौर में निर्धार जात पात न ता जागो मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर विखे रमयो जय चक्र चैन चित्र आदेवदार मुरद नाद नाद अनंत आद अंत न जानिया विखा देव तुरंत देव भेव न जाने जय मरम वेद गते सनक अवसन के नंदन पावई न हसे जज किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही से सकरो मुखचार सर्व शब्द पतार के तर जापी है जय जाप आदेव गादे नाद मुरद ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धराज राज प्रवीण जज कंद्र देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे विराजे सूत्र विव नाहे गुड़ गौर न भील भीकर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूम काश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीरा जात्र न देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपद पतार के तर जानिय जय ज्योत शेष नाम संस्पन्न नेद पूरन होत सो सोध हटे सब असुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकब गड़त गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मेल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखे न सेव कतेब देव दानो मूढ़ जमानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपद आद नाद नाथ अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे गे न ने सने अभे नाद अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व तेन भीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयानद भेक चक्र चेना भरन जागो जात पात ना भेक रूप रेख ना रंग जागो राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व खाय सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आदेव पाल दीन बंद प्रवीण श्रीपत सर्व को करतार भरन चेन चक्र जागो चक्र चेन अकार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेख ना भरन सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ करता जगत में जयगात भूत भवान प्रमाण देव अगंज आद अंतना श्रीपस परम प्रग अभंज धर्म के अन करम जे तक कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम
दुष्ट अन्ना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अखा दंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल दुष्ट हरण पुष्ट करण सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दोष हरता बेस भरता आज रूप अपार दोष दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठ विचार जेते जानिए सब विचार आदेव अपार।

कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नरक को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा। को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म कवन जो को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा। कम कहो सो सम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मन दोहरा। कहा रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोहे तवन दोहरा। कवन रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहा कर्म को कर्म है कहा भ्रम को नाश कहा चितन की चेष्टा कहा अचेत प्रकाश दोहरा। कहा नेम संयम कहा कहा ज्ञान ज्ञान को रोगी शोकी कवन कहा धर्म की हान दोहरा। को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। तो प्रसाद दीरक तिर भंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंदन दुष्ट निकंदन आदृते चतरासुर मारण पते धारण नरक निवारण गूढ़ गते अक्षय खंडे देर चंडे खंडुर नंडे अलग मते जय जय होसी मय का सुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडासुर चंडन बुंड विहंडन धूम्र विदंसन महक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्दह दे जय जय होसी मय का सुर मर्दन राम कपर्दन आदृते डावरू डवंग बबर बवंग भुजा फरंग के तेज भरंग लंगड़िया फादे आयुध पांदे सहन विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके असी झमके फुंग फरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन राम कपर्दन दय दिजणंग चंडासुर चंडन मुंड में मंडन खंड खंडन खून खिते दामनी तमंगण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जो जिते सरदार विमरकन दोष प्रकरकण पुष्प हरकण दुष्ट मते जय जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम का तल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुराचन ध्वज प्रमाचन निर्दय निराचन धर्म रिते श्रोणता चिंती अनल विनती जोग जयंती खड़क धरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजान श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते जय जय जय जय जय होसी मय कासुर मर्दन भू बकाश पताल जलंग सैती स्नान अष्ट प्रवाहन बोल निवाह तेज तुलंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन भू बकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम दुकारण द्रव मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतिदन अश्वभुजे जय जय होसी मय कासुर मर्दन करम विनाशन धर्म तुझे घुंघरू घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म तुझे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध सनाय गमता एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आदि कुमार काल वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आदंते किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी संठार निवासन बाय पताल काल आकाश अनले संकटि निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरकण तुंद तपे दुग्धोग दहंती जाल जयंती आद नाद गात अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जबत जीवे जय जय होसी शस्त्र प्रकरकण आद नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगण तच सरे कर कसाक उठारे नग निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमन के हल्लंके आद अतंके क्रूर गते जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन ब्रितन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुखसर नासे सुबरे सुवासे दृष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद नाद गाद उर्धंग घंट का विराज रुणजन बाजे भ्रम भय बाजे सुना सुरंग कोकल सुन लाजे कल विग भाजे सुग उपराजे मधुरंग दुर्जन दल दझे मंथन रिझे सबै न भजे रोह रणंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर बिते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रज्वंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती सत्र मथंते दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद नंगी अगाद गते बिरल राज विहंडन चक्षर दंडन तेज चंडन आद गते सुर नर प्रत पारण पद उधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन विश्व विधंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाश से उन्तन नासे जोत प्रकाश से अतुल बले दानवी प्रकार खण व सर्वर वर खण दोष प्रधर खण बितल तले अष्टायुध बाहन।

कई कोट इंद्र जय पान हार कई करण रुद्र जुगिया दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत ने निधिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नि संत उपार गनीमन कारे पच पशु नग नाग नरादि सर्व समय सबको व्रत पारे भोगत है जल में थल में पल में कल के नि कर्म विचार है दीन दयाल दया ने दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद वेद गते भवेद उचार है रोजी ही राज विलोक राजिक रोग रोहान की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम।

जान को दे दया जान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुध सुंदर श्री परमापद लह है रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते वह भांत बचावे शत्रु अनेक चलाओ दिखाओ तऊ तन एक ना लागन पावे राख दे अपनो कर दे कर पाप समूह ना भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीज बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काल पताल रसा चल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सके नि पार बाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही कुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतरानंद से रुमनारिक से सब मिल गायो वेद कते बिना भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितो सब जग छायो भेद पुराण देव पुराण भेद निर्पाण सब बजहारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेदत है अन छेद पुकारे रागना रूपना रेखना रंगना सागना सोगना संगति हारे आदे अनादे अगादे अभेगत भेग जपियो तिन्ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वदान महाव्रत धारे देश प्रियो कर भेद तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कपित अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया मां सतरन के साल है दान के दिवैया मां मान के बड़े आओ शान के दिवैया कटैया जम जाल है जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया मां बुद्ध के दिवैया मां मानु के मान है ज्ञान हूं के गाता मां बुद्ध ताकि दाता देव काल हूं के काल मां काल हूं के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पवन साधना की देख बाधे अरब के अरबी अराबे ते आराध्य तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने नेज काम है मरहटा मंगले तेरी मानसो तपस्या करे दड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंगे फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते है रो के रोहिले मांग देश के मंगेले वीर भंग सी बुंदेले पापों को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीशनिया वे तिब्बती द्याव देख दलत है जिन्हें तो है ध्यायो तीरे पूरा ने प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को श्रे दान बान को महित गंग दान को अभेद कहियत है रंग में रंगी राग रूप में प्रवीण और काहू पे ना दीन साथ अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदारे अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचाता है चिट्टी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जज कहियत है करते है विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे आकार खानिया अदवे अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूप होके राशि है अनासी कह के मानिए जंत्र हुना जाजा की बाप हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा कह न मानिए तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानिए तेज हुको तरह के राशि को सारे के शुद्धता घरे के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की शान है विरक्ता की वान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूपे के रूपों को रूपे कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है काम को गनिंदा के खुबी को दीनदा के गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल के सतरन के साल के मित्रन को पोगत के वृद्धता की वासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूर्वन प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के

पास के बुद्ध को घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, देवन को देव है के सुतता को सर है, जान को बचे मान को दबैया, जम जाल को कटे कामना कर है, तेज को प्रचंड है, खंड को खंड है, महीपन को मंड है के त्रिहना नर है, विश्व को भरने के अवधा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है, पाइये न पार पारावार को पार जागो गिरज विचार सो विचार को निवास है, हिंगला हिमालय दगावे हब सिंह लबिझावे पूरी बिना पार पावे आशा ते अनाश है, देवन को देव मा देव हूँ के देव है, निरंजन अभेव न तद्वय विनाशी है, अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक धीन है कटैया जम जाल के, देवन के देव मा देव हूँ के देव नाथ भूम के भुजैया मुहे मा बाल के, राजन के राजा मा साज हूँ के साजा मा जोग हूँ को जोग धरैया ध्रुव छाल के, कामना के करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावा छात कैसी छतरा ने छपा कैसी छप कालिंद्री के कुल के, हंस निशी सिहारूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातों सिंध रूल के, परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगावादी के रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरा तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा संगा सीसा सी सुरंगावादी के सोही अत है, हिम्मा सी हिमालय हर हाब सी हल्लब्बा ने, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही अत है, चंदन सी चंपा चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोही अत है, गंगा सम गंगधार वकांसी बिलंदाबाद की रति हारी की उजारी सोही अत है, फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भखरी गंदारी गोर का खरी कर दे जा जारी पान गया हरि तेरो नाम ध्यायत है, पूरा पलाव काम रूपा उसमाऊ सर्व ठौर में भी राजे जहां जहां जाइयत है, पूरन प्रतापी जंत्र

प्रफुल्ल शोभा वसन जाता प्रडुल बंतन दुरंत खग मृग महान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लहत मोर सुर ढुरे जान मन मत चौ।

मितोज मोह रो संग व्रत करना निधान जाता प्रफुल सुंदर सुजान बंतन महीप जल तल महान जाता प्रसो करना निधान जगमग तेर पूरन प्रताप अंबर जमीन जा

सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच माया सच